0: देखो जून 12
1: अनुगानी का तू एक
0: हाँ कद तू एक गे सिंपले पाउना नुसिकर यंग निमन बाउ पर थे
2: Mix of Rock.